किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: This is Sunrise Nightlife.
1: मेहरबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा

0: Next on Sunrise. The Royals in the house. Charles and Camilla coming up for you next. Duhi Dista on the way for you as well on Sunrise. The Sunrise Breakfast Show, brought to you by Well Baby and Well Kid. Ideal vitamins for children from Vitabiotics, the UK's number one vitamin company. Available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.
1: ZTV HD पर देखिए तुम से तुम तक.
2: बस कुछ ही दिन और रहो, फिर हमारा भी मंडप सजेगा.
1: क्या इन दोनों के प्यार को लग जाएगी किसी की नजर?
2: आर्य भारतामर अगर नील और सिमरन की शादी होते देखना चाहता है तो सभी के सामने खुल के बता तू कौन है और तूने क्या किया है.
3: मैं ही राजीव भाटिया हूँ.
1: तुमसे तुम तक रोज रात 8:30 जी टीवी HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप.
0: एडवर्टाइज ऑन द UK's नंबर वन कमर्शियल एशियन रेडियो स्टेशन. Call the Sunrise Radio sales team today on 020-8574-7777. The Sunrise Breakfast Show, brought to you by Well Baby and Well Kid. Ideal vitamins for children from Vitabiotics, the UK's number one vitamin company. Available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.

0: Breathe in Colnbrook, thank you so much for your message. हजारे वाला मुंडा सतिंदर सरताज सजन राजी इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज फ्राइडे की सुबह शबनम साही के साथ इस घंटे का द सॉन्ग दैट यू पिक्ड
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी
2: बहुत हुआ सेटबैक अब होगा मेरा कमबैक
0: अ ड्रीम वेटिंग टू बी रिवाइव्ड वॉच डॉक्टर आरंभी मंडे टू फ्राइडे 7 पीएम ओनली ऑन कलर्स टीवी The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk. Ananya Pandey and Laksh headline this Gen Z love story. It's about falling in love and falling out of love. Fahim Abdullah. Chand Mera Dil.

0: बना, तेरे ही इश्क की चांदनी से बना चांद मेरा दिल। फहीम अब्दुल्ला ऑन द वोकल्स, द टाइटल ट्रैक फ्रॉम दिस फिल्म, out in cinemas very soon, next Friday I think. I saw the trailer the other day when I went to see Krishna Avataram. Jabhi aap sun rahe hain, jo bhi sat kar rahe hain, hope you're having a beautiful Friday. 07925-700-272 the number to WhatsApp me on. Mera aur aapke saath Monday to Friday 9 se 12 ke beech. Don't miss Southall Travel's special prices to India, Pakistan, the UAE, Thailand, Bali and Africa. For the best fares and 24/7 support, call 0208-574-8410 or visit southalltravel.co.uk today. On the other side, 1961, Hum Dono, Rafi Sahab.
1: Main zindagi ka saath nibhata chala gaya.
0: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया. स्टिल टू कम.

0: The icon and living legend Sonu Nigam live in concert. The Revolution Tour comes to London on the 23rd of August at the OVO Arena, Wembley. Get your tickets now to see Sonu for one show only in the UK. Tickets available from AXS and Ticketmaster. Powered by RGB in association with Berico Food Distribution Limited and Dairy Valley. Come see Sonu Nigam live, brought to you by Rock On Music. It's a TCO production. Catering partner Madhus, hospitality partner The Taj Group, radio partner Sunrise Radio. We got it at
1: Selco. If you're in the trade, you can rely on Selco Builders Warehouse for thousands of items in stock, all at trade prices. And with Click and Collect, you'll get the job done fast and for less. This month, we've got a mega deal on a 20-kilo bag of Dunlop CF24 Grey Flexible Tile Adhesive, only £15. Check online for even more offers or see them in store at your local Selco today. It's where the trade goes. Price ex VAT at 20%.
2: ZTV HD पर देखिए तुम से तुम तक।
3: बस कुछ ही दिन और रहो, फिर हमारा भी मंडप सजेगा।
2: क्या इन दोनों के प्यार को लग जाएगी किसी की नजर?
3: हार ये बार धनर, अगर नील और सिमरन की शादी होते देखना चाहता है तो सभी के सामने खुल के बता तू कौन है और तूने क्या किया है।
4: मैं ही राजीव भाटिया हूँ।
2: तुम से तुम तक रोज रात 8:30 ZTV HD पर अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
5: जॉय आलुकास पेश करता है एक्सक्लूसिव 35% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड, डायमंड एंड प्रेशियस स्टोन ज्वेलरी। साथ ही ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर पाएं 0% डिडक्शन और खास अपने NHS नर्सेस के लिए हु हील विद देयर हैंड्स एंड केयर विद देयर हार्ट्स। जॉय आलुकास पेश करता है फ्लैट 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। बस अपना वैलिड ID दिखाइए एट द टाइम ऑफ परचेज। ऑफर केवल 7 जून तक। जॉय आलुकास, वर्ल्ड्स फेवरेट ज्वेलर।
6: Nuromol Dual Action contains the power of ibuprofen
7: and the strength of paracetamol
6: combined together to provide faster, longer-lasting, more effective relief than regular painkillers alone. Hit pain hard
7: with Nuromol Dual Action Pain Relief.
6: Contains ibuprofen and paracetamol for pain not relieved by regular painkillers. Ibuprofen or paracetamol individually.
7: Always read the label.
8: Drive on Sunrise with Pepe's Piri Piri. Download the Pepe's app for exclusive deals and tasty offers. Plus, enjoy easy ordering whether you're in-store or relaxing at home.

0: Of course, the movie does star Divya Bharati and Rishi Kapoor as well. All right, here we go. This is what your trio sounded like.
1: कुछ important documents Mr. Sharma को भेजने हैं बॉम्बे. हमारे साथ चलकर notary public के सामने sign कर दो. उसके बाद हम चले जाएंगे गौरी पूजन के लिए मंदिर.
2: तुम्हें जरा फिक्र नहीं कि इतना बड़ा कारोबार, इतनी बड़ी empire का इकलौता वारिस कुछ नहीं करता. सिवाय आवारा गर्दी के.
3: मैंने तो आपसे आपका नाम, आपका बंगला, आपकी दौलत, ये सब तो नहीं मांगा था ना.
2: बिना मांगे मिला है ना तुम्हें, इसलिए तुम ना शुक्र हो, एहसान खामोश हो.
3: लेकिन इससे कहीं बेहतर होता, कम से कम आपके नाम के बोझ तले तो नहीं दबाया था.

0: details. T's and C's apply.
1: ZTV HD पर देखिए तुम से तुम तक।
2: बस कुछ ही दिन और रहो, फिर हमारा भी मंडप सजेगा।
1: क्या इन दोनों के प्यार को लग जाएगी किसी की नजर?
3: आर्य वार्तालाप। अगर नील और सिमरन की शादी होते देखना चाहता है तो सभी के सामने खुल के बता, तू कौन है और तूने क्या किया है।
2: मैं ही राजीव भाटिया।
1: तुम से तुम तक रोज रात 8:30 ZTV HD पर, अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 App।
4: द पीपल ऑफ ब्रिटेन लव देयर फैंसी ब्लेंडर्स। They've bought loads of them. And luckily, if they bought them with Barclaycard, they earned rewards. In fact, they'll earn rewards on all their eligible purchases. It's a more convenient way to consume your fruit and veg. What you buy is your business. Giving you rewards on purchases is ours. Barclaycard, backing your future. 28.9% APR representative variable, subject to application, financial circumstances and borrowing history. T's and C's apply.
5: Drive on Sunrise with Pepe's Piri Piri. Now is the time to download the Pepe's app. We're giving 10% discount to every first order. You heard it right. 10% off with every first order with the Pepe's app.

0: fast, reliable, and with a price match guarantee. Book now on 0208-574-8410. South Hole Travel. Any airline, anywhere, anytime. At all protected.
1: अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
1: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
1: और हमारे सोने की वैल्यूएशन।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में दो ब्रांचेस के साथ,
0: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल। सबसे सोना सड्डा सोना।
2: Wasim Jewelers.
3: At Aldi, we think low prices are for everyone. And boy, do we mean everyone. You, your nan, your cockapoo, your ex-situationship, Barbara from next door, traffic wardens, Piers Morgan, even that annoying guy James from finance. Yep, low prices should be enjoyed by all, not just those with a membership, what's it? So Aldi don't do one. No points, no cards, no faff. Aldi, which cheapest supermarket? Even without a loyalty thingy.
4: ZTV HD पर देखिए तुम से तुम तक।
5: बस कुछ ही दिन और रहो, फिर हमारा भी मंडप सजेगा।
4: क्या इन दोनों के प्यार को लग जाएगी किसी की नजर?
6: आर्य भारतानंद अगर नील और सिमरन की शादी होते देखना चाहता है तो सभी के सामने खुल के बता तू कौन है और तूने क्या किया है।
5: मैं ही राजीव भाटिया।
4: तुम से तुम तक रोज रात 8:30 ZTV HD पर अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
7: न्यूरोमोल ड्यूल एक्शन कंटेन्स द पावर ऑफ आइबुप्रोफेन
8: एंड द स्ट्रेंथ of paracetamol combined together to provide faster, longer lasting, more effective relief than regular painkillers alone.
7: Hit pain hard
8: with Neuromol Dual Action Pain Relief.
7: Contains ibuprofen and paracetamol for pain not relieved by regular painkillers. Ibuprofen or paracetamol individually.
8: Always read the label.
9: No, it's okay. Don't adjust your radio. That's the sound of a company that did not advertise on Sunrise Radio. Now let's have a listen to a company that did. Can you hear the difference? Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station and see the difference for yourself. Call the Sunrise Radio sales team on 020-8574-7777.
10: Friday nights on Sunrise, brought to you by ZTV's Tum Se Tum Tak. Daily at 8:30 PM on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
9: This is Sunrise, the UK's biggest.

0: celebrating 36 years of excellence.
1: 24 hours a day.
0: This is Sunrise with the latest news headlines. Next.
2: Sunrise Radio.
3: Friday nights on Sunrise, brought to you by ZTV's Tum Se Tum Tak. Daily at 8:30 p.m. on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
4: आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉर्ट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज। 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली। ओपन ट्यूजडे टू संडे।
5: अरे चंचल कुमारी, साइको ऑनर शहर इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया, लॉन्ग टाइम, कैसी हो तुम?
6: खातून कौन थी?
7: एक्चुअली वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है, डोमेस्टिक वायलेंस।
6: तो पुलिस में जाती, वन विभाग में क्या करने आई थी? इस हर पति एनिमल,
4: एक पति दो दो कंफ्यूजन और फुल फैमिली एंटरटेनमेंट। 15th मई से प्रजापति पांडे मचाएंगे ऐसा बवाल कि आप भी पूछेंगे कौन पत्नी कौन वो, पति पत्नी और वो दो, इन सिनेमाज नेशन वाइड फ्रॉम द 15th ऑफ मई।
0: नो नो, इट्स ओके, डोंट एडजस्ट योर रेडियो। That's the sound of a company that did not advertise on Sunrise Radio. Now let's have a listen to a company that did. Can you hear the difference? Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station and see the difference for yourself. Call the Sunrise Radio sales team on 020 8574 7777.
3: Friday nights on Sunrise, brought to you by ZTV's Tum Se Tum Tak. Daily at 8:30 p.m. on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
0: This is Sunrise, the UK's biggest

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।